0: मुसा
1: ओए लब आ
0: हेदन पानी मेनता गड जेम बार तैयार वानता
1: दर्जी बुनानी नि मेन का
0: क्या रे कुन मेन तो हाबल
1: दर्जी तखान तखान बुनु मने किहार कुन नि मेन है हम गामस मिरे इरुवेल मो कुन नि मेन
2: मादा मेन दुरन नि मेन नोने मुनी या हावीरता
1: ए मेरे अगड़ बैग कर बेनो वाचे ये कौन है मालूम है हवीरों ने मेरे वाह रंगल रंगल अनेक दो हम इंदुरा
2: हवीरा
1: तखान ठंडे हैं तखान बल्लो मिट्टी बैग दक्का वाह कर ये दुन निमेरी मालूम है नो अनेक दो हवीर
0: बेनो मेरे अगड़ बैग दाम बिताने नले है जाएंगे ये दुन तेरे कुराने की मोसा
1: देने तो देंग कुरान का ऐंगे ना आओगे हुन्ना मिनी हुन्ना वाह हद का मानी इकोल कोल आवश्यक रूम ये मार बनानी जास कुरान
3: हम गीते गुले गए हम वागुतों उफद्दा फ्री आडो तक स्टूडियो तेरे का
4: आदा स्पॉट इफेक्ट्स आवर में एक क्या नहीं कहता है वागुतों उफद्दा देंग कार ब्रेक्स जिसमें आप खा करते थे हम होरी हाँ आडो तक स्पॉट इफेक्ट्स हो तो हदा फुन्ना
5: लोंड हैरान विस वे यहाँ खुरी जमानों के यहाँ रंगलंग हम ही वने असलो हैं हम
3: गीते वो गुड़ी को भाई तो डायलॉग डेलीवरी के खास कम क्या गुण्डे होने आडो हम तेरे के हैसियत तुम करने का जिज ऐसे तालो
5: आधे डायलॉग तंग असुवर हम होने को तो नेचुरल को होने नहीं क्यों बाप एक तेरे यंग अधि लवता अन्नाती वे बैफहर ए आमो बहरो नों कम हम विदालो आने कम एक सब में से असलो का ड्रामा या unika minnu aslo anna ni kiyalo nike gatu ga
4: eh drama kolege jehen de so miho shogur wa katan tan bhat
5: varsha
4: we me hawa le hene lavta jamil se himanu wa fe hori
6: na na gite

0: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वैंडा हिंग कमेंने अफन थी कंको लन्ना
1: तिको तुम हाउ दाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आह हाल बला फे मुन्ना रकांग कंको देन्ना है ती मुन्ना वारा उपावे

0: थुरास थुरास
1: थुरास ए तरीका अहर में बहा सगाफता आदकादायक तेरेगा आद बावर गंत तके हुरे अडवहालं बेनं ता
2: हाँ वारा पैनो
3: दिविराजे गड़ ठ्यून कोला अंगार दो गहवीर फाहिज जहर बुरासु दो गहवीर हाथर गड़ फनराग अदी आदित दो गहवीर फाहिज जहर हमें कने दिविराजे क्याडू

0: Emmerit.
1: Emmerit.
0: Rit Emmerit.
1: Emmerit.
2: मिगटिगे कुरी मिदनी एमे रीति प्रोग्राम एमे रीति प्रोग्राम का अगन में जहां देमो मिदनी ए हुन तेरिन एमे रीति लवता को लिस्ट गे तेरे गे होरी लवता एमे फहुंग अगन में मिजे ही अगन में ना एमे फहुं बदल भी ए हुन तेरिया आहुमत एमे रीति लवा प्रोग्राम के मेह साबन तेंग अलुन वाहक दक्का लानी खदीजा अस्सलाम वालेकुम खदीजा
3: वालेकुम सलाम
2: की नंग हाल
3: Alhamdulillah,
2: I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm
3: going
2: to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to
3: say that
2: I'm going to say that I'm going to say that I'm
3: going to say that
2: Eh, mi bawa Khadija gelawa jahat deh, mi dah Khadija.
3: Ah, aduh beloria, beful na beka malu nasa ti beful asah sako, adi fakir na asah sako, deng adi judu, deng Marian, Marianisa ya, deng fatur na.
2: Arun meng faratun barat boleh syukuriya he, marun meng.
3: Ah, amat orang adi amat. Ah, amang omar ya kang adi, assalamualaikum.
2: Pajar ya kang itu yang khati jawab kita.

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो केरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं